फिर दो यार तो नन्ना लच्ची लच्ची मैं जो बुली फाय फाय दो जीरो दो हो ना दो होगा थाने या बीजेगा लो तुम ने यो हा यहाँ को मु फा को या ने जीरो ये न्यू है गने तना दो छा ती बिम ले बिना मा ये न्यू दो छा बिम ला को नी कुता ने छा था गा ये न्यू ला थे ना पर्सन ने ले यो हा छो को लो गान्या ले लो ये न्यू ते को लो ना दा मा ये न्यू